0: जहां पना, आज पहली बार आपकी प्रजा ने आपका प्यार और अपनापन महसूस किया है, और इसलिए आज ये आवाम गुस्ताखी की माफी चाहते हुए आपको नवाजना चाहती है अकबर के नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
1: हम इस तोहफे से बेहद खुश हैं, बहुत शुक्रिया, हम इसे कबूल करते हैं।
2: जलालुद्दीन।